प्रतिष्ठा पाउने सम्मान दुर्योधने दानव सूर्य सुते बलम फल धरे सतीम चकुंती सुते विज्ञानी विदुरे भवति भवताम सुतिश्च नारायणी जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वधा।

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: एउटा इरानी चरा बुलबुल कम्युनिकेशन को रात्रि प्रस्तुति बुलबुल बुलबुल बुलबुल।

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो साइड अहिले बिहानको 5 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301